0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली घुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

0: बुका पिएरै ठ कबु पेन्सिलेरै ठ कबु झलै फटाका आजि ठ का कना हो बाबा के ओष्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनल से त लड़का सामान निहेर
1: ओहो इ बुढा लेख्ने का हुई थी जलम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कै ठ कबु पेन्सिल हेरा कै ठ कबु झोलै फटाका ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लान नि छिटो
1: अरे कहाँ से नानम ठ
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रटगे या झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबु लड़का कहाँ पियरी थी ना कबू पेंसिल रहीन ना झोला फाटल हुई एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर। अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने, कुलतमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही भदौ 13 गते, 20 गते र 27 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ये पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब ही जाए।
3: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: किंगलिटे शर्त लागू हुई एनसेल नेपाल के लग
1: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालय के अनुरोध
2: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडावासी दादु भैया दिदी बहिनी हुक्रे सड़क के किनार में पशु चौपाए नई बान देवी सड़क किनार में माल वस्तु नई कुरा देवी साथे सड़क किनार में पशु चौपाए बान के ढुंगा बालुआ गिट्टी मल कुरा के दुर्घटना हुईले से एकर जिम्मेवारी स्वयं व्यक्ति हुक्रा ले पर्ना बा
1: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालय लाइकपुर

मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौनरोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहानिक 9 बजे थारू भाषक खोज खबरमा आफ्नो स्वागत बा खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम अपनाउक्रा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइनमा www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मफे सुन्तिरहल बाटी खोज खबर शुरू गरी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर नगरपालिका के वर्तमान समस्या के विषयमा टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ से चिन्ता व्यक्त काली हुइलक छलफल निष्कर्ष विहीन टीकापुर नगरपालिका के वडा नम्बर 5 मा हात्ती के आतंक सिमरेनी शाहीपुर कलमीदारा नुक्लीपुर के किसान चिन्ता मना ओ रसुआ बारीमा आबसम्म 579 जना के सब भेटागिल हजारौं नागरिक आमिन सम्पर्क विहीन आप खोज खबर विस्तारमा टीकापुर नगरपालिका के वर्तमान समस्या के विषयमा टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ चिन्ता व्यक्त कलबा आबसम्म चालू आर्थिक वर्ष के बजेट के अख्तियारी निहोक काम संचालन निहुइटी रलक अवस्था मन उद्योग वाणिज्य संघ चिन्ता व्यक्त कलक हो उद्योग वाणिज्य संघ वर्तमान समस्या समाधान के विषयमा टीकापुर नगरपालिका के वडाध्यक्ष व कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगरजी ढैक छलफल समेत कलबा छलफलमा रामबहादुर नगरजी कार्यवाहक नै रामबहादुर नगरजी नै कार्यवाहक मानकन जैना विषयमा अपनहुक र एकमत हुइलक ओडा अध्यक्ष हुक र बटुलबाट ओडा अध्यक्ष के उहरसे आपन कहाई धरती ओडा नम्बर 8 के ओडा अध्यक्ष दीर्घबहादुर थकुला मिल्क जय नगरपालिका बन्दी नै बनाएकैक नगर प्रमुखन आग्रह गर्नबाट तर कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगरजी आपन बाइपास गर्न लग बजेट आफ्ना अख्तियारी दिह निसक्ना आफ्ना अख्तियारी दिह पर्ना हुइलसे नगरसभा फेर हुइपना अडान धरल पाछ छलफल निष्कर्ष विहीन हुइलक हो छलफलमा सहभागी उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष सन्तोष खड्का फे वडा अध्यक्ष हुकनके काही सकारात्मक अइलक हो जसिक हुइट नगरपालिका निकास दिना विषयमा एकमत होक जय सुझाव देला टीकापुर नगरपालिका चालू आर्थिक वर्ष के बजेट के आबसम्म के अख्तियारी पालिका से निहुइलक हुँसे नगरपालिका के कौनो फे काम हुई स्याकल्नी हो छलफलमा वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष बाहेक अन्य सकु 8 वडा अध्यक्ष र टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ के पदाधिकारी ओ पत्रकार हुकन के सहभागिता रह टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 मना अब हात्ती के आतंक मचलबा आजकल दैनिक जसिन रात के समय मन वडा नम्बर 5 के सिमरेनी शाहीपुर कर्मीदादा नुक्लीपुर लगायत के क्षेत्र में हात्ती सतैना कर्लबाट रातिक समय मन गांव मना आक घर भटकैना किसान हुकन के धान बाली केरा बाली नष्ट करलबाट रात रात का हात्ती आक सतैना करलक कारण यहां के नागरिक त्रसित हुइलको आगी बार्कन भाँडाकुँडा ठठाकन बैठना कलक कर्मीदारा के स्थानीय सिंहराज बुढामगर जानकारी देलबाट नुक्लीपुर में केरा खेती करती रहलक हर्क विस्ता आपन लगायत वहां के अन्य कृषक हुकनहक फेकेरा तथा धान बाली में समेत छेटी पुगैलक बटुलबाट टीकापुर गौशाला व आसपास के क्षेत्र मन अब हात्ती कुस छेटी कर्ल गौशाला व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष उत्तम कुमार शाही जानकारी देलबाट वडा नम्बर 5 के वडा अध्यक्ष बलवीर थारू आपन ओडा के कलवीरारा सिमरेनी शाहीपुर नुक्लीपुर लगायत के क्षेत्र में आजकल हात्ती दैनिक किसान के लगैलक बाली नष्ट करना ओ वाकर नियन्त्रण के लाग सम्बन्धित निकाय खबर करबे चासो निडेलक बटुइलबाट ओ क्षेत्रमा हात्ती गाउँमा आकन स्थानीय के केरा ओ धान बाली नष्ट करना के संग घर भटकैना करलबाट कलसे बाघ ओ चिटुवा घर पालुवा जनावर हुकन खादेना करलबाट रसुआ स्थित भोटेकोशी लड्डेमन बुधबार बिहान का एक कचो ऐलक बाढ़ी मन पर्क मृत्यु हुना के संख्या 553 पुगलबा प्रहरी प्रधान कार्यालय के अनुसार विभिन्न जिला से आबसम्म 553 सब फेला पारगिलक जानकारी देगिलबा खोज खबर में एक घड़ी विश्राम पाछ इनिनी बाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम

0: यो खाने मन त कहाँ छ र, तर के गर्नु, जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ, फेरि खानै पर्छ।
1: तपाईँ एक्लो कहाँ छ श्रेया, त्यति माया गर्ने आमा छिन्, दिदी छिन्, भाइ छ, बरु एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे, कुलत छुटेपछि को थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ, बाँच्नुपर्छ अनि को संसारको मजा लिन पाइन्छ।
0: हो र, तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र, त्यसो भन्छ
1: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त, जब म निस्केँ काम गर्न थाले अनि पो कमाइ छ त, यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन। हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो, अब घरदम गर्नु छ, श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
0: ओहो, तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिस जस्तो यार। अब म पनि कुलत छोड्छु, आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु, भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
2: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
3: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
2: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर। भागीरथी मेडिकल टिकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टिकापुरमा भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई भेष हुनु, मुटुको ढड़कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-685-40-777। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार।
4: खोज खबर म फेरफेर स्वागत बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकै मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट मन्त्री हुकनकै आपन एक महिनाकै तलब र सुवा बाढ़ी प्रभावित नागरिकके सहयोगके लागि देना हुलबाट काली बैठक प्रदेश मन्त्री परिषदकै बैठक से मुख्यमन्त्री भट्ट सहित प्रदेश सरकार के मंत्री हुकर एक महीना के तलब रसुआ के बाढ़ी प्रभावित नागरिक हुकन सहयोग स्वरूप उपलब्ध कराइना निर्णय करगिलक हो। बैठक से रसुआ के बाढ़ी प्रभावित के लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के ओर से 2 करोड़ रूपया आर्थिक सहयोग करना निर्णय समेत कलबा। प्राकृतिक विपत्ति से प्रभावित नागरिक के उद्धार राहत तथा पुनः स्थापना मन सहयोग पुगेना उद्देश्य लेकर प्रदेश सरकार ऊ निर्णय करलक जनागिलवा। मुख्यमंत्री तथा मंत्री हुकन के तलब से हुईना सहयोग संग प्रदेश सरकार के 2 करोड़ रूपया सहयोग बाढ़ी सहयोग लेकर बाढ़ी प्रभावित क्षेत्र में राहत काम में थप सहयोग पुग्ना अपेक्षा करगिलवा। रसुवाके भोटीकेसी लद्देमन अहिलक भीषण बाढ़ीमा पर्क हालसम्म 579 जनाके सब फेला परल बा। नेपाल प्रहरी शुक्रबार सन्ध्या 7 बजेसम्म सार्वजनिक अलग विवरण अनुसार विभिन्न 8 जिल्ला से 579 जनाके सब फेला परलक हो। प्रहरीकै अनुसार रसुवामा 12, नुवाकोटमा 37, धादिङमा 40, चितवनमा 233, गोर्खामा 46, तनहुँमा 29, नवलपरासी पूर्वमा 154, नवलपरासी पश्चिममा 27 जनाके सब फेला परल बा। बाढ़ी प्रभावित विभिन्न क्षेत्रमा उद्धार तथा खोजी कार्य जारी बा प्रहरी जोखिममा रहलक परिवार सुरक्षित स्थानमा सर्नाकेसँग स्थानीयवासी व विभिन्न निकायके समन्वयमा बेपत्ता हुइलक हुकनके खोजी कार्य कर्ती रलक जनैला बा बाढ़ीके कारण अवरोध हुइलक सड़क तथा डगर खुलैना काम्फे हुइटी रलक प्रहरी से जनागिल बा आमिनफे हजारौं जन बेपत्ताबाट बेपत्ता तथा सम्पर्क विहीनके खोजी कार्य जारी रहलक प्रहरी से बटवागिल बा जल विद्युत आयोजनामा काम गर्न 679 जनमनी सम्पर्क विहीन हुइलबाट यी मफे एक आयोजनाके 576 जन कामदारके अवस्था अज्ञात रहलक जनागिल बा इम्पानके अनुसार बाढ़ी से प्रभावित आयोजना मध्ये अपर त्रिशुली एक मनकलहक 576 जन कामदारके संख्या अज्ञात बा ऊ आयोजना मन करिब 1350 जन कामदार कार्यरत रहलक मन किहु मन उद्धार करगिल बा कलसे कोही करगिल सेफे भारी संख्या के कामदार से आमीन सम्पर्क हुइनी सेकलक इम्पान से जनागिल बा इम्पानके अनुसार प्रभावित आयोजना हुकनमा कार्यरत मध्ये कतरा जहन सुरक्षित स्थानमा ढैगिल बा तर कतराके अवस्था आमीन अज्ञात रहल बा विशेष कै क सुरुङ तथा आयोजना परिसर भित्र रहलक मनिनके उद्धार हुन तत्काल प्राथमिकता दिएपन अवस्था रहलक इम्पान जनागिल बा रसुवा भोटेकोशीमा ऐलक बाढ़ी से धादिङके बैरेनी थेसे गलौदी सम्मके काठमाडौँ मुगलिङ सड़कमा थुपार्किलक लेरो पञ्चायत पाछ शुक्रबार रातका 8 बजे थेसे सड़क एकतर्फी सञ्चालनमा आइल बा सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय रामनगरके प्रमुख दिल्ली नारायण पाण्डे बैरेनी क्षेत्रमा कुश लेडो बाँकी रहल सेफे तत्काल दुईतर्फी रलक वर्षे दुईतर्फी यातायात सञ्चालन नै कर सेक्लक बटुइलबाट वहाँ सवारी साधनके चाप हुइलक ठाउँमा सुरक्षाकर्मी धर्क सहजीकरण करलक व दुईतर्फी सड़क सञ्चालन गर्न योजनामा रहलक बटुइलबाट रसुवाके भोटेकोशीमा बुधबार ऐलक विनाशकारी बाढ़ी से धादिङके बैरेनी थेसे गलौदी समयके काठमाडौँ मुलिङ सन्दमन लेडो थुपार्गिल रह बाढ़ी से ठाउँ ठाउँमा थुपार्गिलक लेडो पञ्चायत पाछ शुक्रबार रातका 8 बजे थेसे सड़क एकतर्फी सञ्चालनमा ऐलक सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय रामनगरके प्रमुख दिल्ली नारायण पाण्डे जानकारी दिएबाट पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङ के बैरेनीमा लेडो पूर्ण रूपमा पञ्चाय बाँकी रहलक वर्षे सड़क एकतर्फी सञ्चालनमा ऐलक उहाँके कहाइबा खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछैनिनीबाटी सुन्दी रही सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
5: टिकापुर नगरपालिकाको अत्यन्त जरूरी सूचना जन्म मृत्यु विवाह सम्बन्ध विच्छेद र बसाईसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना घटेको 35 दिनभित्र आफ्नो स्थायी ठेगानामा रहेको वडा कार्यालयमा गई अनिवार्य रूपमा दर्ता गरौं र गराउ विद्यालय भर्ना गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राहदानी बनाउन नाबालक परिचय पत्र बनाउन बैंक खाता खोल्न तथा राज्यबाट प्रदान गरिने अन्य सेवा लिन व्यक्तिगत घटना दर्ता आवश्यक हुने भएकाले आजै वडा कार्यालय जाउँ व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउनु सबै नागरिकको कर्तव्य हो नभुल्नु है व्यक्तिगत घटना घटेको 35 दिनभित्र व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौं जिम्मेवार नागरिकको परिचय दिउँ थप जानकारीका लागि टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण इकाई र सम्बन्धित वडा कार्यालय
6: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
7: मैं नहीं जाइस वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
6: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
7: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
8: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपार के तालु खुल्ना डेन्ड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाउ खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
4: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। कञ्चनपुर बझाङसे 14 किलो चरेस सहित तीनजना पक्राउ परलबाट कञ्चनपुरके कृष्णपुर नगरपालिका 5 गजरौला स्थित गोप्य सूचनाकै आधारमा अवैध लागू औषध चरेस 13 किलो 905 ग्राम सहित बझाङके बंगुर बुंगल नगरपालिका 1 दहबर बैठना 22 वर्षीय कलम धामी चलैलक सुदूरपश्चिम प्रदेश 01001 छ। 4811 नम्बरके उज्जर रंगके बोलेरो पिकअप जीप ओ उह जीप मन सवार केदार सिउ गाउँपालिका 7 काडा चौर बैठना 50 वर्षीय करण धामी पक्राउ पर्ला खुइट। शुक्रबार रातका इलाका प्रहरी कार्यालय गुलहरिया ओ अस्थायी प्रहरी पोस्ट गजरौला कञ्चनपुरसे संयुक्त रूपमा खड्गिलग प्रहरीके टोली जीपके बोनट मन लुका छिपाक धरलक अवस्थामा चेक जाँच गरबेर ऊ पदार्थ फेला पार्कन जीप सहित दुनू जना पक्राउ करगिलबा। अस्तकन बझाङके पिठरचिर गाउँपालिका 4 मल्लो भत्ता स्थित सोही ठाउँ बैठना 31 वर्षीय वीरबहादुर बोहरा सञ्चालन करगिलक बोहरा किराना पसल मन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङसे खड्गिलक टोली खान तलासी करबेर पसल भित्र लुका छिपाक ढलक अवस्थामा 400 ग्राम लागू औषध चरेस फेला पार्क ऊ चरेस सहित बोहराहना पक्राउ कलक जनागिल्बा। यी सम्बन्धमा प्रहरी आवश्यक अनुसन्धान गर्ति रहल्बा। भदौ 10 गते रसुवाके भोटीकोशी लड्डेमा अलग बारीके कारण धुन्चेमा अल्पत्र पर्लक मनिन्ह स्थल मार्ग से उद्धार करना कार्य शुरू करगिल्बा। धुन्चेमा रहलक तीर्थयात्री पर्यटक एवं सर्वसाधारण बागमती प्रदेश सरकार वैकल्पिक मार्ग प्रयोग कर्क काठमाडौँ उपत्यका लन्ना व्यवस्था मिलैलख हो। यकलाक मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर समन्वय कर्लबाट। नेपालके रविन्द्र ढाट दौड़तु यूएफसी सीजन 5 के छनौट के फाइनलमा पुगलबाट वहाँ चीनके संघाईमा शुक्रबार हुइलक सेमी फाइनलमा न्यूजील्याण्डके कासिप मोर्दोज हन पराजित गर्ल। बझाङके बाघ उपनाम पैलक वहाँ मेमा मकाउ मन पहिल खेलमन फिलिपिन्सके किम्बर्ट अलिन्टोन जोन हन पराजित गर्ल रहल। गैलक वर्ष अगस्त मन म्याट्रिक्स फाइट नाइट एफएमएफएन 17 मन भारत के चर्चित चैंपियन चुंगेरेट कोरेन हन हेराकन ब्यान्टममेट उपाधि जीतल पाछ रविन्द्र के चर्चा चलल रहा। टीकापुर नगरपालिका वर्तमान समस्याके विषयमा टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघसे चिन्ता व्यक्त छलफल निष्कर्ष विहेन। टीकापुर नगरपालिका के वडा नम्बर 5 हात्तीके आतंक सिमरेनी शाहीपुर करविदारा नुकरीपुरके किसान चिन्ता मना। रसुवा बाढ़ीमा अबसम्म 579 जनाकी सब भेटाकिल हजारौं नागरिक आमहीन सम्पर्क विहीन। अब थारू भाषा खोज खबर अत्र और समाचार 5 बजे खबर संक्षेप सुन सकबी। अब खोज खबर से प्राविधिक मित्र दीपेन्द्र हन धन्यवाद देती। मई गीता चौधरी विदाई टू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रही। राम राम।
9: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरो साइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
10: यही भदौ 20 गते शनिबारका दिन
11: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टीकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
9: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बडी रिसाउने, झिजो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागु पदार्थ सेवन गर्ने,
12: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनु होला।
13: डाक्टर आउने दिन यही भदौ 20 गते शनिबार
14: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637072।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे गुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उने ना पट्टा नि पैना त
1: अधि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाका आन्छे के कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261

0: कबू कापी रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा के होस्ट पाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 98046-77417

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल रही था, कभी झोले फटाका आजी था, का कना हो का कना हो। बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जलम भर भर भर थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था,
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आन लाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला जस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो, जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या, ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला, टेन्सनमा भए म त। अब
4: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्रेक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
3: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ, कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
4: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
0: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
3: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
5: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिपर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
4: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-48-58-28।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
1: छिछी कस्तो गनाएको इनका संतानले टोयलेट गनाएर मार्ने भए फेरि छिमेकीको गाली पाइने भो के गर्ने होला घरमा पुरुष पनि छैनन्
4: ए दिदी पनि कति डराउनु भएको कोही चाहिँदैन फोन गरेपछि तुरन्तै सेवा उपलब्ध गराउने आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसबै सेवा छँदैछ नि
1: कता छ त त्यो
4: जता भए पनि फोन गर्नुहोस् न तुरन्त आइहाल्छ नि
1: फोन नम्बर कति हो भाइ
4: आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाइ सेवाको सम्पर्क नम्बर 9760202300 हो अर्को पनि छ 9865692026
5: तपाईँको पनि टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सप्ती राजापुर गेरुवा र लम्कीमा सेफ्टी ट्याङ्की गोबर ग्यास र रिङवाला टोयलेट सरसफाई गर्नु परेमा आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवालाई सम्झिनुहोला सञ्चालक शेरबहादुर थारू सम्पर्क नम्बर 9762020300 र 9656692026

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आजी था काकना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला अनले से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर भर आई थी रहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटाका था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं सीख
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रख गया झोला उद्योग मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गया झोला उद्योग में रख गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: लो इतने छिटो आमा बन लाग तो
4: I'm going to go to the house. बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्योलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जै बो पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
2: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहीं हो का
1: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे वस्त बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
3: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोपराइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: होलसेल पैक किन लीजिए। जहिया फैन जहां फैन पैक खरीद करी वो 20% कम कैश फिर तक एनसेल ऐप में क्लेम करी।
1: कैश फिर तक ले लीजिए, कैश फिर तक ले लीजिए।
0: एनसेल पैक किन लीजिए। शर्त लागू हुई। एनसेल नेपाल के लग।

0: डिजाइन का झोला सुबह मूल्य में पाइन्छ। जस्ते स्कूल बैग, कैरिंग बैग, लगेज बैग, फाइल बैग लगायत का विभिन्न डिजाइन का बैग अर्डर करे अनुसार बनाइन्छ र पुरानो बिग्रेको झोला मरमत गरिन्छ। एकचोटी सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: रडगैया झोला उद्योग, मुनुवा रोड, टीकापुर, कैलाली। संचालक राम प्रसाद चौधरी।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
0: हिंदू महिलाहरूको महान चाड़ हरितालिका 30/2083 को पावन अवसर में संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ
4: अरेल्ला सुनचांदी पसलमा छटकी तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चपकी पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काँटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइन का गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपट मूल्यमा बनाइन्छन् एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनु
0: आरएनला सुनचांदी पसल बलभद्र चौक टीकापुर एलएन मेडिकल अगाड़ी संचालक खुमरा सुनार संपर्क मोबाइल नंबर 9810625347

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल ले रही था, कभी झोले फटाका आज था, कहा कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं सीख ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आन लगाती ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजय 5 बजे थारू भाषा खोज खबर में अपनो कन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनौका अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप से हाम्रो पात्रो और नेपाली पात्रो माफी सुन्दी रहल बाटिए। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टेक बहादुर साउत स्मृति केन्द्र के अध्यक्ष में नेत्र बहादुर साउत चाहिँ योजना बनाकर काम कर सरोकारवाला हुकन के सुझाव। रसुआ जिला में बाढ़ी में पलक आफन्त खोजी के लागि जैना परिवार जानकी गांवपालिका यातायात खर्च देना। रसुआ बाढ़ी में मृतक के संख्या 626 पुगर। त्रिशुली बी 3B मन चिनिया विज्ञ टोली परिचालन। ओ टीकापुर जानकी जोशीपुर के 36 जना आमीन संपर्क बीन आफन्त के खबर पैना प्रतीक्षा में परिवार। आप खोज खबर विस्तार में भदौ 10 गते बिहान रसुआ स्थित भोटे कोशी मन अलग बाढ़ी से संपर्क विहीन हिलक बनीन के आफन्तजन छटपटी मनबाट टीकापुर नगरपालिका जानकी गांवपालिका और जोशीपुर गांवपालिका के कुशमणि संपर्क में अल से फे 36 जना आमीन संपर्क में आईनी स्याकल हुईट हुकन के परिवार उद्धार हुईल खबर सुन्ना मन आतुर बाढ़ी पाछ टीकापुर नगरपालिका एक समिति पूर्के वीरबहादुर चौधरी शनिराम थारू मणिराम चौधरी राजेश चौधरी भुवन चौधरी अंतराम चौधरी खुशीराम चौधरी दीपक चौधरी संपर्क विहीन टीकापुर एक के भूपू कमैया बस्ती के बादल चौधरी बीफू चौधरी महानबहादुर चौधरी शिवनारायण चौधरी परजीत दंगौरा थारू फेट वस्तक एकता पूर्के राजकुमार थारू विपतराम चौधरी आशीष चौधरी आशीष के बहिनिया कमला चौधरी विपतपुर के साधुराम चौधरी फे संपर्क मनी हुई टीकापुर नगरपालिका 5 मनिकापुर के चुनकी थारू चन्द्रबहादुर थारू धनुआ थारू ठगराम चौधरी कमल बहादुर चौधरी फे संपर्क विहीन पारिवारिक स्रोत से देलक जानकारी अनुसार हुक्र सक्कु रसुआ स्थित ढुंचे हाइड्रो पावर मन कार्यरत रह रसुआ भन्सार कार्यालय में कार्यरत टीकापुर नगरपालिका एक ब्लक नंबर 13 के संतोष न्यौपाने बैंक में कार्यरत ब्लक नंबर 14 के सुभाष रावल और नुआकोट के विदुर में कार्यरत टीकापुर सात डांडा बोझी के अर्जुन कुमार डंगौरा थारूफे संपर्क विहीन ओडा कार्यालय संपर्क विहीन मनीन के परिवार से सूचना लेकर प्रशासन उपलब्ध करैलक टीकापुर नगरपालिका के विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख निर्मला चौधरी जानकारी देलबाट टीकापुर के युवा हुकन हन काम मलैजिना समितिपुर के ठेकेदार तुलाराम चौधरी व भान्से दल बहादुर चौधरी संपर्क माइलबाट बाढ़ी ऐना बेला क्वाठा में रहलक दुनू जना भाग औरो ठाव में जाइबेर सुरक्षित हुईलक ओ हुक्र काठमाडौं पुगसेकलक तुलाराम के छाई वर्षा जानकारी देलबाट आफन्त बेखबर हुईलक परिवार सदस्य हुकन हन छटपटी हुईटी रहलबा संपर्क विहीन समितिपुर के राजे चौधरी के श्रीमती पुष्पा चौधरी मूर्छित हुईलक फूलकुमारी चौधरी बटुलबाट टेक बहादुर साउत स्मृति केन्द्र टीकापुर के अध्यक्ष में नेत्र बहादुर साउत चयन हुईल स्मृति केन्द्र के आज हुईलक 11 वार्षिक साधारण सभा से नेत्र बहादुर साउत की अध्यक्षता में 11 सदस्य लघु कार्य समिति चयन कलबा ज्याकर उपाध्यक्ष में उमेश नाथ सचिव में अमित चौधरी कोषाध्यक्ष में पवित्र शाह सहसचिव में रोशनी खटका चयन हुईल वस्तक सदस्य में शालिग्राम शर्मा जानकी गिरी राजनाथ बालकृष्ण चौधरी निर्मला भण्डारी सरोज भट्टराई फे चयन हिलबाट साधारण सभा गणेश प्रसाद ओझा के समय जगतोमा सल्लाहकार समिति गठन कलबा सल्लाहकार समिति के सदस्य में वीरबहादुर चौधरी नरबहादुर साउत गंगा विष्ट व प्रदीप साउत चयन हिलबाट यी स्याग साधारण सभा के उद्घाटन गति टीकापुर नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगाजी टेक बहादुर स्मृति केन्द्र के सपना हासक्कु जमिल्कन साकार पारपना बटुलबाट जानकी गांवपालिका के अध्यक्ष गणेश चौधरी कौनोफे काम करबेर योजना आवश्यक पना हुईल कहसे स्मृति केन्द्र फे अल्पकालीन व दीर्घकालीन योजना बनाकर काम कलसे मजा हुईना सुझाव दिलबाट स्मृति केन्द्र के कार्यवाहक अध्यक्ष गणेश प्रसाद ओझा

0: समस्या बुझ घरभेट कार्यक्रम फेकलबा पालिका के अध्यक्ष गणेश चौधरी सम्पर्क विहीन हुई लखुकन के खोजी कार्य के लागि पहल कना आफन्त के खोजी के लागि जैना परिवार यातायात खर्च के व्यवस्था कना बटुलबाट जानकी गाउँपालिका से काम के सिलसिलामा रसुवा गैलक चार जना भदौं दस गते के बाढ़ी में पर्क सम्पर्क विहीन हुई लखुट छ जना सम्पर्क विहीन मध्य दुई जना सम्पर्कमा आशेक लकलसे चार जना आमिन फेसाङ सम्पर्कमा आइस्याकल निमित गाउँपालिका सम्पर्कविहीन हुइलक हुकनके परिवार घर परिवार परामर्शक लागि सामाजिक मनोपरामर्शकर्ता फे परिचालन करलबा घरभेट कार्य मन घर परिवार हन भेटना कामके लागि बाहिर गैलक के विवरण लेना कलक सामाजिक मनोपरामर्शकर्ता सुनिता चौधरी जानकारी देलबाट उहाँ घरके परिवार हन सकारात्मक स्वाचपरट खोजी कार्य जारी बा हाम्रो फे पहल करती बाटी आते निहित कैकन सम्झैना कलक फे बटुलबाट सरकार बाढ़ीमा पर्क बेपट्टा हुइलक मनिनके खोजी उद्धार कार्य करती रहलबा। टीकापुर आठ सूर्यपुरके सूरज बाढ़ी हन माडल बनाई भ्याई नभ्याई हुइलबा भडौं लागलसँग विभिन्न चाडपर्व भित्रैबा सूरजके पसल मन लव माडल बनेनाउ पुरान माडल मरमत गर्नाके अग्रिम अर्डर आसिया कल्बा सूरज सर माडल बनेना कच्चा पदार्थ पोखरा शेष अन्ना कलक जानकारी देलबाट ग्राहकके कहल ओ रवाजल जसिन गुणस्तर सामान देना हुइला कुहरसे आपन हन देशके विभिन्न भागसे माडल बनेना फोन ऐना कलक उहाँ बटुलबाट उहाँ बनैलक माडल जिल्ला भित्र ओ बाहिरसम्म जैना कलक उहाँके कहेबा उहाँ आपनसँग माडल व्यवसाय मन अन्य दाजु हुकनफे काम कर देलक बटुलबाट सूरज एक दिनमा एक ठो माडल तयार कठ एक ठो माडल बनाइल बाफत माडल के बनावट ओ आकार हेरकन दस थे पन्ध्र हजार फे चार्ज लेना कलक उहाँ बटुलबाट मन लगाकर काम करना हो कलसे व्यावसायिक रूपमा काम करना मजा सम्भावना रहलक उहाँ बटुलबाट सूरजके घरमन दाई ओ अन्य चारजना के परिवार रहलबा उहाँ यी व्यवसाय से परिवार सन्तुष्ट रहलबाट हातमा कला वसी फुइलक वर्षे अन्य गाठ मन जाक अलमल पर निपरल हो क्याकर बात सुन्न निपरल हो हातमन पैसा हो जाइत कलसे काम चल्ती रहलक उहर्से अपना कलकी पेसा से सूरज खुशी हुइलक बटुलबाट। खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछा एनिमी बाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन एक गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुरमा।
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
4: ईसीजी सेवा,
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
3: फोन नम्बर 9894827359 र 9948423059। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टीकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
0: रसुवा बारीमा पर्क ज्यान गुमेनाके संख्या 636 पुगलबा। नेपाल प्रहरी शनिबार दिनको 2:50 तथ्याङ्क सार्वजनिक गति मृतकके संख्या 626 पुगलक जनैलबा। प्रहरीके अनुसार जौन मध्ये रसुवामन 13, धारिङमन

0: 49, गोर्खामा 54, नवलपरासी पूर्वमा 158, सफेला परलवा वस्तक नुवाकोटमा 41, चितवनमा 233, तनहुँमा 31, नवलपरासी पश्चिममा 47, सफेला फलक प्रहरी सिजनागिल्बा प्रहरी शनिबार दिनसम्म 2301 जना उद्धार कर्गी लक्फे जनैलबा प्रहरी रसुवासे 676, नुवाकोटसे 1622, धादिङसे 3 जनाके उद्धार कर्सेकलक हो। प्रहरी पाचक सूचना अनुसार काठमाण्डु उपत्यकाकै विभिन्न अस्पतालमा उपचार तथा डिस्चार्ज हुइलक घाइतेनकी संख्या 140 रहलबा। बाढ़ीके कारण प्रभावित बनलक रसुवा स्थित उपरके त्रिशुली 3B जलविद्युत आयोजनाके सुरुङ भित्र फसलक मनेनके उद्धार कार्यके लागि चिनिया विज्ञ टोली परिचालन करगिल्बा। प्रधानमन्त्री कार्यालय 6 जना सम्मिलित चिनिया विज्ञ टोली उद्धार मन खटलक जानकारी करैलबा। अत्यन्त जोखिमपूर्ण व प्राविधिक रूपमा जटिल मानगिलक उद्धार कार्य थप प्रभावकारी बनाई सरकारकी अनुमति मन चिनिया टोली परिचालन करगिलक प्रधानमन्त्री कार्यालयसे जनागिल्बा। ऊ टोली चिनिया हेलिकप्टर मार्फत सीधा त्रिशुली क्षेत्रमा अवतरण कलक प्रधानमन्त्री कार्यालयसे जनागिल्बा। टोली नेपाली सेनाके विज्ञ टोलीसे पूर्ण समन्वय व सहकार्यकर्ती संयुक्त रूपमा उद्धारके काम शुरू कलक बटोइलबा। संयुक्त टोली सुरुङ भित्रके वस्तु स्थिति व सम्भाव्यताके प्राविधिक रेकी अनुगमन कर्नाबा प्रारम्भिक अनुगमन के आधारमा उद्धार सम्भव हुना देख गिलक चिनुह रसुवा सीमा क्षेत्र मन स्ट्याङ्ड वाई अवस्थामा धरगिलक चिनिया विज्ञ हुकन हनफे तत्काल घटना स्थान मन बोलैना बटुवा गिल्बा। विश्वविद्यालय उपकुलपति प्राचार्य डाक्टर किशन दत्त भट्टकी अनुसार विश्वविद्यालयके पदाधिकारी शिक्षक तथा कर्मचारीके भदौ महिनाके तलब निश्चित रकम कट्टी कर्क उद्धार कोषमन जम्मा करगिल्बा। विश्वविद्यालयके देशके अकल्पनीय संकटमा पर्लक बेला प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारके लागि 88 लाख बराबरके सहयोग करल लगलक उहाँ बटवा गिल्बा। सरकार एकदर प्रणाली मार्फत श्रेक संकलन कर्ती र लकमोर्चे यी रकम सिद्धा उद्धार कोषमा जम्मा करलक। उपकुलपति भट्ट बटुइलबाट विश्वविद्यालयके आज बैठक कार्यकारी परिषदके निर्णय अनुसार उपकुलपति एक महिनाके तलब प्राध्यापक तथा कर्मचारी 10 दिनसम्मके अन्य तहके कर्मचारी 2 थेसे 7 दिनसम्मके तलब भट्टाके रकम कट्टा करके सरकार सहयोग गर्न निर्णय गर्लक हो। संघीय कानून बमोजिम संचालित विश्वविद्यालय हुकनमा सहकुलपति समेत रहलक। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल सहयोग आह्वान करल पाछ यी स्यागनै त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाण्डु विश्वविद्यालय पोखरा विश्वविद्यालय लगायत कोष मन जम्मा करलक निर्णय कर सिक्लबा। खोज खबरमा फेरफे विश्राम पाछै निनेबाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: घर त जेनतेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
2: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
1: ए हो त, कहाँ पाइँदैछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका?
2: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
1: अब त म ढुक्क।
3: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी टिकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर मोहनदास भाट,
2: मोबाइल नम्बर 9848513426, जमरापारी टिकापुर कैलाली।
4: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरो साइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
5: यही भदौ 20 गते शनिबारका दिन
6: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
4: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बडी रिसाउने, झिजो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागु पदार्थ सेवन गर्ने,
6: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनु होला।
5: डाक्टर आउने दिन यही भदौ 20 गते शनिबार
7: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868800008 र 9825637772।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 बनगाउँ बीचपुरुवामा स्थित लौह प्रगति टोल विकास संस्थाके दोस्रो साधारण सभा ओराइलबा। साधारण सभामा सचिव मनिषा चौधरी प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्लरल, कोषाध्यक्ष अनिता चौधरी 34,900 के आयव्य प्रस्तुत गर्लरल। साधारण सभामा उत्कृष्ट किसान बलिराम चौधरी, उत्कृष्ट पशुपालक चम्फीदेवी चौधरी दोस्रो लावो सम्मान पत्र लिएका सम्मान गरिगिलबा। साधारण सभामा टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 वडाध्यक्ष मोहन लोहार विक प्रमुख अतिथि रह। वडाध्यक्ष विक गैलक भडौंके 10 गतेकै राष्ट्रिय विपदमा राहतके लागि प्रत्येक टोल विकास संस्थाके छुट्टी सहयोग से भारे सहयोग जुटाइ सेकना बटुलाबाट। वहाँ टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 से कलहक 25 जना मध्ये 23 जना आमिन सम्पर्क विहीन हुइलक अवस्था रहलक, उहाँसे यहाँ अभियान चलाकन लैजिना टोल विकास सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नबाट। अध्यक्ष विक स्थानीय स्तरमा महत्वपूर्ण काम हुइल सेफे, जनता मन विकासके अनुभूति हो, अपनत्व निमिल पाछ, स्थानीय सुधारके लागि टोल विकास संस्थाके गठन करगिल बटुलबाट। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि टिकापुर नगरपालिकाके गैर सरकारी संस्थाके शाखा प्रमुख तथा टोल विकास संस्थाके फोकल पर्सन अमृता रावल, कार्यक्रम मन वडा सदस्य गणेश घरती मगर, ज्ञानी कुलाके अध्यक्ष जोखनलाल चौधरी, नगर स्तरीय साझेदारी टोल विकास संस्थाके अध्यक्ष सिर्जना शर्मा पण्डित, सचिव नरबहादुर सट, कोषाध्यक्ष गोमा घरती मगर लगायत बोल्न रह। संस्थाको अध्यक्ष मानबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा हुलक कार्यक्रम सञ्चालन खुशीराम चौधरी करल रल कलसे, स्वागत उपाध्यक्ष हीरा चौधरी करल रल। सुदूरपश्चिम प्रदेशके मुख्यमन्त्री खकराजबाट शिक्षाके गुणस्तर सुधारके लागि बजेटके समानुपातिक तथा आवश्यकताके आधारमा वितरण गर्न बटुलबाट। वर्ल्ड भिजनके समन्वयमा नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति धनगढ़ीमा आयोजना कलक प्रदेश स्तरीय विद्यालय दिवा खाजा सम्मेलन सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री भट्ट शैक्षिक सुधारसँग विद्यालयके भौतिक पूर्वाधार निर्माण हफे प्राथमिकताके सँग आग बढ़ाएपना बटुलबाट। उहाँ कतरा विद्यालयमा आवश्यकता से धीर भौतिक संरचना निर्माण होइन तर कतरा विद्यालयमा आधारभूत पूर्वाधार समेत अभाव रहलक उल्लेख गर्दै असिन असमान अवस्थाके अन्त्य करपनामा जोड़ देलबाट। कहौं र भवन होइन, कहौं र भवनके अभाव होइनकै बजेट वितरण गर निमित उहाँ कल मुख्यमन्त्री भट्ट प्रदेश मन विकास बजेटके प्रभावकारी कार्यान्वयनके सँग सुशासन कायम गर संचार क्षेत्रकै भूमिका महत्वपूर्ण रहलक बटुलबाट। उहाँ नेपाल पत्रकार महासंघ तथा संचारकर्मी सुशासनके पक्षमा साथ दिए व सरकारके काम कार्यवाहीमा निरन्तर खबरदारी गर आग्रह समेत गर्नबाट। प्रदेशके नीति तथा योजना आमीन अपेक्षा अनुसार परिणाममुखी बन निषेकलक स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री भट्ट असीम कमजोरीकै कारण विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम समेत अपेक्षाकृत प्रभावकारी बन निषेकलक बटुलबाट। उहाँ दिवा खाजा कार्यक्रम हुन थप व्यवस्थित प्रभावकारी परिणाममुखी बनाई आवश्यक रहलक बटुलबाट। यो समाचारके सँग खोज खबर ओराइल अन्तिममा जति जति खबरके मुख्य शीर्षक फेरसे। टेक बहादुर साउट स्मृति केन्द्रकी अध्यक्षमा नेत्र बहादुर साउट चयन, योजना बनाएको काम गर सर्वकालवाला हुनकी सुझाव। रसुवा जिल्लामा बारीमा पलक आफन्त खोजिके कार्य देना परिवार जानकी गाउँपालिका यातायात खर्च देना। रसुवा बारीमा मृतकके संख्या 626 पुग। त्रिशुली 3B मन चिनिया टोली परिचालन। टिकापुर जानकी जोशीपुरके 36 जना आमिन सम्पर्क भिन, आफन्त खबर पैना प्रतीक्षा मन। लिता आबोकला थारू भाषा खोज खबर अत्र और समाचार 6 बजे खोज खबर सुन्न सेगी अब खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी यहाँ धन्यवाद देखी देती मई गीता चौधरी फिर विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीकापुर फिल्म सुनती रवि राम राम
2: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जेब पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
8: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
2: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
7: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेष हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848143426

0: किंगली टे सर लागू हुई एनसेल नेपाल के लग
1: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: पेंसिल पैक किन लीजिए जहिया फेन जहां फेन पैक खरीद करी ओ 20% कम कैश फिर तक एंसिल ऐप में क्लेम करी
1: कैश फिर तक ले लीजिए कैश फिर तक ले लीजिए
0: एंसिल पैक किन लीजिए शर्त लागू हुई एंसिल नेपाल के लग
2: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
3: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
3: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
6: आई हो बड्डो घर कहिया सिर जइबो पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकलो
2: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिलबो नहीं करत का कहना हो का
6: मिस्तरान बर्जन उकना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
4: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436
7: परिवार में सभी बिरयानी आखिर स्वस्थ रह स्वस्थ व्यवहार अपना पर्यो तर ये हुई सभी एक सुख कहीं कोई बिरयानी कहीं कोई बिरयानी मत दिक्क भैस कस काल ने छिटो नलग
8: मैं चाहिए जो माइलो कि बर्बर बर्बर कराई के
7: हे न साहे समस्या पर्यो क्या कहीं के रोग आने कहीं के समस्या आने मत हैरान भैसकें छोरो उस्त बिरामी स्कूल जाना पा जो दिन थन्किया बात ये बिरामी सब हैरान भाया मन ये पेट को बिरामी कस्तो हो भोक लगे लगे खान ही सकते
8: तेरी माइला ये सानो कुरा को ये धीरे चिंता लिख पर्स को हम टीकापुर में रहे चंडीमा मेडिकल स्टोर में गए तो भईहाल
9: हजुर स्वदेशी विदेशी औषधि सुपथ मूल्य में उपलब्ध छे समय समय में विशेषज्ञ डॉक्टर को सेवा उपलब्ध
10: छपर्क स्थान चंडीमाई मेडिकल स्टोर ढकरोला रोड टीकापुर कैलाली
11: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ज

0: से कबू का पिए रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आज कहा कना हो बाबा फिर उस गटिलो ठाव से झोला आनल से लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बड़ी थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला दस कटरास बाटी ये बुढ़ो ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

जिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: लीते
1: एंसल पैक किन लीते
2: जहिया फेन जहां फेन पैक खरीद करी 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीते कैश फिर तक ले लीते
2: एंसल पैक किन लीते सर लागू हुई एंसल नेपाल के लग

महाराज परीक्षित को परमा सुखदेव स्वामी ले बताऊन भो लौत सवन कादि ऋषेश्वर भनेर सवन कादि लाए श्रीमद भागवत महापुराण को यथार्थ प्रकार को प्रकरण ले ध्यान मनन कीर्तन को प्रक्रिया बताएर अहिले दुर्योधन राजा को मानहानि भो तेई न्यूले शकुनी संग गए जुआ को प्रबंध मिस्त मिलाएर सारा संपूर्ण नष्ट भ्रष्ट गर्यो महाराज परीक्षित। यसै कारणबाट नारी का कारण दुईटा कांड घट्यो भारत में कई कई को कारण रामायण द्रौपदी का कारण महाभारत यही हो है त त्यसै कारण होशियारी हुनु बरबर नबोल्नु अलि अड्गलेर बोल्नु।